0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: सेफ पे राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, उम्मत को वो आका के लिए तोड़ रहा था। कंकर भला देते नहीं आका की गवाही, सरकार के लहजे में खुदा बोल रहा था।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
8: सेफ पे राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627.
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274 414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
8: सेफ राइडर .co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio. The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: नहीं लिख सकता। ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को आमद रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज सोचे हैं, तेरी मिसाल तेरी अजमतों से छोटे हैं। ईद मिलादुन नबी की खसूसी नशरात के लिए सुनते रहिएगा ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BDH8EY,
8: टेलीफोन

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइट रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے
6: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا ملان کی شیروانی شلوار قمیض ویسٹ کوٹ پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں
7: ملان دلہا ہاؤس 8183 وائٹ ایبی روڈ بریڈفورڈ BDH 8DR ٹیلیفون 07885428349 ادر برانچ دی مغل ایمپوریم 1304 لیڈز روڈ بریڈفورڈ
6: سنیے جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ دیوان بیڈز فرام اونلی 99 pounds
6: خوبصورت کارپیٹس لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ بوبیز کارپیٹس لسٹڈ ڈائٹ ٹریفک لائٹس اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ BD3 ADN بوبی آئیے بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے نمبر ملائیے 07414260078
8: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
9: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے
8: جی ہاں بیلز جہاں فش اینڈ چپس برگرز فل انگلش بریک فاسٹ فریش کیکس اینڈ میکرونز
9: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے آج ہی تشریف لائیے اوپن 7 days بیلز سی روم 46 رولی ایونیو بریڈفورڈ BD6 1DA فون 01274306567 بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن
6: ارے سنتے ہیں اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے
9: ایسا عمدہ لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں
6: منگنی سالگرہ شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کے کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے
9: اور خوشبو لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے
6: منگلا کیٹرنگ 77 Athington Street بریڈفورڈ BD8 ATY
9: ٹیلی فون 01274731555 منگلا کیٹرنگ سروسز .UK
10: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے میں محمود رضوی اکاؤنٹنٹ جی ہاں چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹ آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی ٹیکسیشن VAT بک کیپنگ پے رول فنڈریزنگ کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ محمود رضوی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453 محمود رضوی
11: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: Karo ibtida jab kisi kaam ki, rakho yaad dil mein. اسی نام کی کرو ابتدا جب کسی کام کی رکھو یاد دل میں اسی نام کی زبان سے کہو وہ خدا ایک ہے یقین جان لو وہ خدا ایک ہے میرا وہ خدا ہے بڑا بے نیاز ہر ایک کام کا ہے وہی کارساز किसी का भी लोगों ना वो बाप है जो बेटा किसी का, ना वो आप है, नहीं उसका हमसर कोई दूसरा, नहीं उसका हमसर कोई दूसरा, वही सारे आलम का है बादशाह। करो इब्तिदा जब किसी काम की, रखो याद दिल में उसी नाम की, जबां से कहो वो खुदा एक है, यकीन जान लो वो खुदा एक है, मेरा वो खुदा है बड़ा बेनियाज, हर एक काम का है वही कारसाज, किसी का भी लोगो न वो बाप है जो बेटा किसी का, न वो आप है, नहीं उसका हमसर कोई दूसरा, वही सारे आलम का है बादशाह। मौजूद सामीने कराम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। यही नशियात पहुंच रही हैं बाज़ इलाकों में प्लस डैप के जरिए। इसके अलावा आप हमारी नशियात सुन पाते हैं पूरी दुनिया में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए, और साथ ही साथ हमारा स्मार्ट ऐप जो है फोन का, उसके जरिए आप अपने फोन पर भी हमारी नशियात से लुत्फंदोज हो सकते हैं। समीन कराम, हस्ब मामूल हस्ब वादा आपसे मुखातिब, आपकी मेजबान उस्मा अशफाक प्रोग्राम इंतखाब के हमरा, और पुरुमीद और दुआगो भी कि जहां कहीं भी आप मौजूद हैं शादो आबाद हैं, खैरियत से हैं, और यकीनन आप हमारे साथ साथ हैं, यानी कि ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ हैं। समीन कराम, गुज़िश्ता एक हम प्रोग्राम नहीं कर सके मंगल के रोज, बस आगे पीछे हो जाता है, तबीयत भी है इंसान की और सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, जो उसका हुक्म हो वो कहते हैं ना, उसी का हुक्म जारी है जमीनों आसमानों में। तो यही बात है कि उसका हुक्म हो तो सब कुछ होता है, उसका हुक्म ना हो तो कुछ भी नहीं होता है। इंसान का अपनी कितनी भी कोशिश कर ले, इरादा कर ले, कोशिश करना, इरादा करना, उसके लिए जिद्दोजहद करना इंसान का काम है, और दुआ करना भी। लेकिन जो उसका नतीजा निकलता है, जो उसका रिजल्ट होता है, वो ऊपर वाले के हाथ में है कि आया वो काम आपके लिए बेहतर है नहीं है, वो पूरा होगा आपका इरादा, आपका जो ख्याल है, जो आपकी कोशिशें आपकी काविशें रंग लेके आएंगी या नहीं, ये फिर ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो सामीन कराम, आज के प्रोग्राम की हम आपको तरतीब व तफसील भी बताते चले कि आज के इंतखाब में हमने क्या कुछ मुंतखब कर रखा है आपको सुनाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। तो हमेशा की तरह नगमात तो हैं ही, खूबसूरत से गीत होंगे आपकी डेडिकेशंस के साथ, आपकी कुछ फरमाइशें भी हमारे पास आती रहती हैं, हम उन फरमाइशों को हतुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उनको पूरा करें, तो वो भी होगा सिलसिला। साथ ही साथ सामीन कराम, आपके जौक की तस्कीन के लिए शेर व शायरी प्रोग्राम में शामिल रहती है, मुतफर्रक कलाम जो है मुंतखब शोरा का, वो हम आपके लिए पेश करते हैं प्रोग्राम में, तो आज भी ये सिलसिला शामिल होगा। इसके अलावा तारीख के, और आपको इल्म है हम उलटते पलटते रहते हैं, जिससे हम महजूज भी होते हैं, जिससे हम मुस्तफीज भी होते हैं, और जाहिर है वो सबक आमोज तो होता ही है। तो आज भी तारीख के औराक पलटेंगे, और बड़ा खूबसूरत सा एक वाक्या हमने मुंतखब कर रखा है आपको सुनाने के लिए, वो भी जरूर आपके गोश गुजार करेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इसके अलावा क्या होगा, जी हाँ, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में होगा जाविया, किसका, जनाब अशफाक अहमद साहब का, और आज का जो जाविया है उसका उन्वान है 3 पीस में मलबूस बाबे और चुगली मीटिंग। बड़ा दिलचस्प सा उन्वान है ये, जब आप सुनेंगे तो फिर आपके इल्म में होगा कि क्या उसमें लिखा हुआ है। हमने भी दोबारा अभी उसको रिवाइज तो नहीं किया, क्योंकि हमने बताया था कि हम उसको सिलसिलावार जैसे कि उसमें लिखे हुए हैं बाब आते हैं, हम उसको पढ़ते जा रहे हैं। तो आज के बाब का उन्वान है 3 पीस में मलबूस बाबे और चुगली मीटिंग। तो सुनिएगा, पता चलेगा कि इसमें किसके बारे में है, क्या लिखा हुआ है। 3 पीस में जो मलबूस बाबे होते हैं वो कौन होते हैं, कहाँ बैठे होते हैं, किस किस्म के होते हैं, क्या करते हैं, और ये चुगली मीटिंग क्या होती है। वैसे तो बहुत से नाम बदनाम है खवातीन का, लेकिन चलिए जब ज्यादा बात इस पे करेंगे जब इस को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ समीन के नाम क्या होगा, और जी हाँ, कुछ बातें जो जहन में आ जाएंगी कुछ आगे पीछे, जो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर की जाएं। आप माशाल्लाह बड़े बाज़ौक बड़े बा इल्म लोग हैं, और बड़े समझदार बाशऊर हमारे सुनने वाले हैं, तो बताते चलें कि किस तरह से आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, इस सिलसिले में। जी हाँ, आप 01274 306677, ये हमारे स्टूडियोज का नंबर है, इसके जरिए आप शामिल हो सकते हैं स्टूडियोज में, फोन करके हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट 01274 306677, यानी 0127436677। एक और भी नंबर है, जी हाँ, व्हाट्सएप का नंबर है, हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है 07800 599 563, यानी 07800 599 563, ये स्टूडियोज का नंबर है। आप स्टूडियोज का नंबर नहीं है, माजर चाहेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इसके जरिए भी आप अपनी जो भी है फरमाइश वगैरह इस तरह से, या प्रोग्राम के बारे में तजावीज़ हैं, आ रहा है कुछ आपके पास, वो आप इस पे भेज सकते हैं, तारीफ करनी है तब भी, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा, आप कुछ इसके बारे में और मजीद कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप इस नंबर के जरिए पहुंचा सकते हैं। तो सामीन कराम, बहुत से ज़राए आपको बता दिए हमने, या आप ईमेल कर सकते हैं bradfordasianradio.co.uk पर, उसके जरिए भी आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। तो चलते हैं आप प्रोग्राम के पहले गीत की जानिब। बहुत सी चीज़ें हैं हमने बता दिया आपको, ये प्रोग्राम की तरतीब होगी, ये तफसील होगी, अब आपसे गुजारिश यही है हमेशा की तरह कि आप सुने तो आप प्रोग्राम में शामिल भी हो जाएं 01274306677 के जरिए, और जब गीत हम पेश कर रहे हों कोशिश कीजिए आप उस वक्त लाइन जो है ना कॉल कीजिए, हमें एम है। आप लोग बताते हैं कि कॉल काफ़ी देर लोग इंतज़ार भी करते हैं, कॉल्स बिजी होती है, लाइन बिजी होती है, तो वो यही वजह है कि हम गुजारिश आपसे ये करते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं फिर हम आपसे बात नहीं कर सकते, फ़ोन पे फ़ोन कॉल आ भी रही हो तो हम उसे उठा नहीं सकते, लेकिन जब आपके लिए गीत पेश करेंगे तो फिर जाहिर है हम आपसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट, आपकी बात सुन सकते हैं। तो लीजिए, प्रोग्राम का पहला खूबसूरत सा गीत आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, सबक भी होता है इन गीतों में सामीन कराम, अगर आप जरा गौर से सुने तो। लीजिए, सुनिएगा, इंजॉय कीजिएगा।

जी समीन कराम, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं और आने वाला पल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। और अक्सर लोग गुजरे पल में रहते हैं, इसी को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। नॉस्टैल्जिया का एक अपना ही कह लीजिए कि एक दौर होता है, अब उसका मजा होता है। ऐसे ही लोग होते हैं जो माजी वो कहते हैं ना, लेकिन दूसरी तरफ शायर ने क्या कहा कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो किसी तरफ तो इंसान वो कहते हैं किसी हाल में खुश नहीं रहता, बिल्कुल बात सही है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी बस वो माजी में ही जिंदा रहना चाहते हैं, पुरानी यादें उनको आती रहती हैं, पुराना वक्त, पुराना दौर, पुराने लोग उनके जहन से नहीं निकलते, कुछ लोग जो हैं वो उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो ये हर शख्स का ना अपना अपना एक तजुर्बा होता है, अपना अपना मुशाहिदा होता है। कुछ लोगों के लिए माजी बहुत तल्ख होता है, उसमें बड़ी बुरी यादें होती हैं, कुछ लोगों के लिए माजी बड़ा खुशगवार होता है। और इसलिए उस पर मुकम्मल तौर पर एतवार नहीं करना चाहिए। जो भी कोई कह रहा है, जाहिर है वो अपने ही हिसाब से बात कर रहा होता है, उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है, उसका अपना ख्याल होता है। गलत कोई भी नहीं होता, इसमें सही गलत की बात नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब मखलूक को पैदा किया। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पुराने जमाने में रहना, जो गुजर गया माजी, उनको शायद आने वाले वक्त से खौफ आता है या वो पसंद नहीं आता। तो दोनों तरह के लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं समीने कराम जो हाल में जिंदा रहते हैं, और उन्हीं को साहिब हाल कहा जाता है। आपने अमूमन ये टर्म सुनी होगी, अगर बात की जाए सूफिज्म की, बुजुर्गों की, सूफियों की, वलीउल्लाह की, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। मतलब तो उसका ये है, वलीउल्लाह का मतलब वली कौन होता है, दोस्त, मददगार, आपका साथी। तो माजी में रहना जाहिर है वो दूसरे लोग हो गए, और जो मुस्तकबिल में रहते हैं या मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं, आने वाले कल के बारे में, वो भी थोड़े बहुत परेशान ही रहते हैं। किस लिए? क्योंकि इल्म नहीं होता ना, कोई बेयकीनी किसी कैफियत होती है कि जो आने वाला कल है ना जाने कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, खुदा ना खास्ता बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा हो जाए। तो वो एक धड़का सा दिल को ना लगा रहता है, बेचैनी सी होती है, हल्का सा खौफ होता है। तो कौन से वो लोग हैं जिनको हुज्न नहीं होगा, जिनको मलाल नहीं होता, जो बड़े मस्त रहते हैं, खुशहाल रहते हैं? वो लोग हैं जो हाल में जिंदा रहते हैं, जो आज इस वक्त का जो वक्त है ना, उसमें अगर हम जिंदा रहें। बड़ा मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स भी हम दे सकते हैं इस हवाले से कि जी माजी से छुटकारा हासिल कीजिए, अगर कुछ बुरा हो गया उसको छोड़ दीजिए, भुला दीजिए उसको, और अच्छा अच्छा सोचिए, और जो आज का अच्छा वक्त है उसमें जिंदा रहिए। करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर शख्स की जो शख्सियत बन चुकी होती है, उसकी जो आदत पक्की हो चुकी होती हैं, जो उसकी सोच डिवेलप हो चुकी होती है ना, उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, टाइम लगता है। तो कोई अगर इस तरह से किसी गिरफ्तार है किसी मुश्किल परेशानी में कि जो माजी में जिंदा है हर वक्त, या जो आने वाले मुस्तकबिल के खौफ में ज्यादातर रहता है, उसको समझाने के लिए बड़ा आपको तरद्दुद करना पड़ता है, बहुत मश्क करनी पड़ती है इस तरफ लाने के लिए कि जो आज का अब का वक्त है ना, उसमें जिंदा रहिए, उसको आप भरपूर तरीके से गुजारिए, ताकि वो जब याद बन जाएगा तो खूबसूरत सी। देखिए हिकमत क्या है इसमें, अभी जहन में ये बात आई है कि आज अगर इस लम्हे को हम खूबसूरत तरीके से गुजारेंगे तो आने वाले कल में ये लम्हा माजी हो जाएगा। तो जब भी आप माजी को याद करेंगे बड़े खुश होंगे, और माजी अगर अच्छा होगा और आप खुश होंगे तो आप जरूर उसके बारे में पॉजिटिव हो जाएंगे, मस्बत सोचेंगे आने वाले कल के बारे में भी कि वो भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला हुल अजीज, अल्लाह के हुक्म से। तो वो जो है ना रिजा और गुमान की कैफियत होती है ना, उम्मीद पेहम के साथ इंसान अगर जिंदा रहे कि हाँ जी आने वाला जो कल है, जैसा आज अल्लाह ने बेहतरीन वक्त गुजारा, तो कल आने वाला जो है वो भी बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा, तो फिर इंसान खुश रह सकता है, शाद रह सकता है, आबाद रह सकता है। वरना तो फिर बर्बादी ही बर्बादी है, क्या कहिए, इंसान नाशुक्रा है, खुद अल्लाह ताला ने कह दिया। तो हमें जो नेमतें हैं उसकी,
उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और हमेशा हम ये कहते हैं आपसे कि शुक्र सिर्फ ये नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह की आप तस्बीहात पढ़ लें 400 दफ़ा, 500 दफ़ा, 1000 दफ़ा, नहीं, उससे शुक्र का कलमा ठीक है आपने पढ़ दिया, आप कॉल तो कर रहे हैं, फेल क्या होगा इसका? अमली तौर पर शुक्र कैसे अदा होगा कि जो नेमत, जो भी सलाहियत, जो भी काबिलियत आपको मिली है ना, उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि ये जो मखलूक़े खुदा है ना, दूसरे लोग हैं, आपके घर वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, कोलीग्स हैं आपके, आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार अजीज हैं, उन सब के साथ आप बेहतरीन तरीके से उसको आजमाइए तो यकीनन आप उसका सलाहियत का, उस काबिलियत का शुक्र अदा करने के थोड़े बहुत अहल फिर हो जाते हैं और इससे अल्लाह यकीनन बहुत खुश होता है, ये याद रखिएगा। मोहतरमा समीरा साहिबा, हमेशा की तरह प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा, हौसला अफजाई हो गई और ये बातें भी ज्यादा इसीलिए फिर दिल से निकलती हैं समीरा साहिबा कि आप जैसे लोग जब सुनते हैं ना तो फिर इंसान को देखिए ना एक तकवीयत मिल जाती है, एक ताकत एनर्जी आ जाती है कि हाँ भाई ऐसे अच्छे अच्छे लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो फिर आपका भी दिल चाहता है कि आप अच्छी बातें कीजिए। ये आपकी जो फोन कॉल्स हैं ये हमारे लिए कह लीजिए गजा का काम देती हैं, एनर्जी देती हैं। तो बहुत शुक्रिया समीरा साहिबा, तहे दिल से आपके मशकूर ममनून। आपने गीत की फरमाइश की है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिलहाल ये गीत सुनिएगा, तब तक हम वो गीत आपके लिए ढूंढ कर हम क्यों करके रखते हैं और फिर ब्रेक के बाद वो गीत समीरा साहिबा आपके लिए हम पेश करेंगे। सुनते रहिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की निश्चियात 1413 AM पे अपनी मेजबान उस्मा अशफाक के हमरा।

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह की हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
5: ये जो पर शिकस्ता है फाख्ता, ये जो जख्म जख्म गुलाब है। ये जो पर शिकस्ता है फाख्ता, ये जो जख्म जख्म गुलाब है, यह दास्तां मेरे अहद की, जहां जुल्मतों का निसाब है, जहां तर्जुमानी हो झूठ की, जहां हुक्मरानी हो लूट की, जहां बात करना महाल हो, वहां आगे ही भी अजाब है। मेरी जान, होंठ तो खोल तू, कभी अपने हक में भी बोल तू। ये अजीब है तेरी खामोशी, ना सवाल है ना जवाब है। वही आब आब है आबले, वही फसल फसल है फासले, वही खार खार है राह गुजर, वही दश्त दश्त सराब है, वही बामोदर है चले हुए, वही चांद चेहरे ढले हुए, वही सुबह कुए मलाल है, वही शाम शहर खराब है। मुझे साथ तुझसे गिला नहीं, कि मैं खुद भी तुझसे मिला नहीं। मेरी जिंदगी भी अजाब है, तेरी जिंदगी भी अजाब है। समय कराम, ये खूबसूरत सा कलाम था सादुल्ला शाह का, जो हमने आपके गोश गुजार किया। यकीनन आपने पसंद किया होगा। और अब किसकी तरफ चलते हैं, खूबसूरत से गीत की तरफ चलते हैं। जो फरमाइश है समीरा साहिबा, आपकी आपकी तरह की खूबसूरत फरमाइश आपके लिए हम इसे पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें फोन किया नाहिद साहिबा, आपने, बहुत शुक्रिया नाहिद साहिबा आपकी नवाजिश। लेकिन अच्छा इसलिए नहीं लगा कि आपकी तबीयत कुछ नासाज है, आपकी आवाज भी मुकम्मल सही नहीं थी। अल्लाह ताला से दिली दुआ है, तमन्ना है कि आपको शिफाए कामिल अता फरमाए, आपकी तबीयत ठीक हो। हैव अ स्पीडी रिकवरी नाहिद साहिबा। और ये सूरज आपने कहा नहीं, ये गीत आपके लिए नहीं है नहीं साहिबा, वैसे सुन लीजिएगा। आपने कहा कि रफी का पुराना खूबसूरत सा कोई गीत लगाइए, तो इस गीत के बाद जो गीत आएगा नहीं साहिबा, वो आपके लिए होगा। फिलहाल इसे सुनिएगा। अजरा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपकी भी प्यारी सी मीठी सी चुलबुली सी आवाज सुनी, अच्छा लगा। और आपने कहा जी हम तो रहते ही हाल में है, हम तो ना माजी को याद रखते हैं ना आने वाले कल की फिक्र करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात अजरा साहिबा। इसका मतलब है कि प्रोग्राम आपने बड़े गौर और खौफ से अभी तक सुना, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तहे दिल से हम आपके मशकूर और ममनून। आपने कहा किचन में काम में मसरूफ हैं आप, साथ साथ प्रोग्राम सुन रही हैं, तो अजरा साहिबा बहुत अच्छी बात है, तभी आपकी आवाज इतनी चुलबुली है कि आप फिक्र फाका नहीं करती, हर हाल में मस्त रहती हैं, खुश रहती हैं। तो हमेशा खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। हम तो यही दुआ देंगे हमारी जानिब से, हमारी पूरी ब्रेडफोर्ड एशियन जो है रेडियो की पूरी टीम, उनकी जानिब से आप सबके लिए हमेशा से नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं। तो अजरा साहिबा ये गीत आप भी सुनिएगा, समीरा साहिबा की फरमाइश है। उसके बाद नाहिर साहिबा के लिए खूबसूरत सा एक गीत पेश करेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। लीजिए इस गीत को सुनिएगा, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा।

जी मौजूद सामीन ने कराम खूबसूरत सा गीत सुना समीरा साहिबा की फरमाइश पे हमने पेश किया और ये गीत अजरा साहिबा आपके नाम भी हमने पेश किया था। अब फोन कॉल पे जो मौजूद हैं गुजारिश है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अब मैं गीत लगा लूँ तो फिर उसके बाद आपसे बात होती है। तो लीजिए ये खूबसूरत सा गीत सुनिएगा।

लेकिन आपको मौका मिला जिस तरह से भी बाद में, तो फिर आप बंटवारा फिल्म को देखिएगा। कौन कहता है कि फिल्में जो है ना वो बेहयाई दिखाती हैं, बुराई दिखाती हैं बहुत ज्यादा, उनमें उनमें फहाशी होती है, उरियानी होती है। फिल्म बंदा फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता है, बंटवारा देखिए जाके आप, आपको इल्म होगा कि इतनी खूबसूरत फिल्में आज भी बनती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कुछ सबक होता है। मजहब को तनकीद का निशाना बनाना हर जगह और उसको इस्तेमाल करके सियासत में लेके आना और फिर उसके लिए कत्लो गारत करना और क्या कहते हैं लड़ाई झगड़े दंगा फसाद का बाजार गर्म करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बंटवारा देखिए जाके, कोई एक सीन बता दीजिए जहां आप कहें कि जी यहाँ पे कोई लिबास गलत था, यहाँ पे कुछ अल्फाज गलत थे, यहाँ पे कोई गीत ऐसा था कि जो ठीक नहीं था। बहुत खूबसूरत कहानी, इंतहाई खूबसूरत कहानी, इंतहाई खूबसूरत तरीके से फिल्माई गई फिल्म और हकीकत पर मबनी। ये जब बंटवारा हुआ था, सब को जानते हैं, उस पर ज्यादा बात क्या करें। 1947 में जब लोग अपना घर बार छोड़ के अपनी आल औलाद उनको कुर्बान करनी पड़ी, वालिदैन कुर्बान करना पड़े, बीवी थी तो शौहर नहीं मिला, शौहर है तो बीवी खत्म हो गई, घर बार छोड़ा अपना। खुद सोचिए आज भी हम जो दूसरे अपने बैक कंट्री से आए हुए हैं, कोई पाकिस्तान से है यहाँ पे, कोई इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, कहाँ कहाँ से लोग इस मुल्क में आके बैठ गए। कोई रोजी रोटी के चक्कर में आए, कुछ बहुत से लोग मजबूरन आए, मजबूरन क्या खवातीन जैसी शादियां करके बहुत सी लोग आए, हम जैसे लोग हैं जो अपनी चॉइस से खुद आए यहाँ पर, आ गए ना। लेकिन आज तक अपने वतन की मिट्टी को भूलता कोई नहीं है, सब उसको याद रखते हैं। तो हम ये सोच रहे थे फिल्म देखते हुए कि हम जो अपनी चॉइस से आए, अपनी मर्जी से आए, अपने वालिदैन बहन भाई घर बार जो वहां पे है उसको छोड़ के यहाँ पे नए सिरे से जिंदगी गुजारने के लिए, अपने बेटर फ्यूचर कह लीजिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, माजे चाहेंगे जो कॉल्स पर हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें, हम जब बात खत्म कर लें तो आप फिर कॉल कीजिएगा। आपसे गुजारिश तो यही है जो कॉल पे हैं। तो बहरहाल होता क्या है कि हम अपनी पसंद से आए या मजबूरन यहाँ पे आए, किस्मत ले आई, उसके बावजूद अपनी मिट्टी को नहीं भूलते, अपने घर बार को, अपने लोगों को। तो ये जिन लोगों को जबरदस्ती निकाला गया था उनके घर बार से, जिन लोगों को बहुत मजबूरन उनको निकलना पड़ा, उनको सब कुछ छोड़ के एक नए सिरे से फिर जिंदगी शुरू करनी पड़ी, और वो जिंदगी किस तरह से कि कितना कुछ उन्होंने छोड़ा, कुर्बानियां दी, बहुत कुछ कुर्बानियां दी उन्होंने। वो चाहते नहीं थे अपना घर बार छोड़ना, वो चाहते नहीं थे अपनी जमीन से दूर होना, वो नहीं चाहते थे अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को कत्ल करवा देना या उनको जख्मी करवा देना। बहुत जख्म लगे, बहुत चरके लगे, उनका दुख उनकी तकलीफ जो है ना वो बस इंसान नहीं समझ सकता सही तरीके से, जब तक इंसान के ऊपर अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि वो कैफियत गुजरे। तो समीने कराम इसको जहन में रखना चाहिए, उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके जो बड़ों ने, बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों बुजुर्गों ने अगर किसी ने माइग्रेट किया तो कितनी कुर्बानियां दी। तो अल्लाह ताला उनके जख्मों को मंदमिल करे। ये कुछ जख्म जो होते हैं ना वक्त के साथ साथ भरते नहीं है, बल्कि वक्त के साथ साथ शायद वो गहरे हो जाते हैं। इट डिपेंड्स कि तकलीफ क्या है, आपका दुख क्या है, आपका जख्म क्या है। लीजिए ये फिलहाल खूबसूरत सा गीत सुनिए, इसके बाद हम गीत पेश करेंगे जिन्होंने हमें कॉल्स की, हम उनके लिए बहुत खूबसूरत सा गीत उनके नाम के साथ जोड़ के पेश करेंगे। थोड़ा सा इंतजार इसलिए करना पड़ेगा कि इसके बाद ब्रेक, ब्रेक के बाद जाविया होगा और साथ ही साथ फिर हम आपकी जो डेडिकेशन हैं वो जरूर पेश करेंगे। सुनते रहिए आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात को 1413 AM पे, ऑनलाइन और डैप के जरिए भी।

0: जी मौजी सामीन, किस चीज़ की बात करते हो? बात कुछ होती है, कुछ से कुछ हो जाती है, बहरहाल चलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, चाहते हुए भी आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल होती हैं। बहरहाल जो आज का जाविया है, हम आपके गोश गुजार करते हैं कि आज का जाविया जो है सुनने से ताल्लुक रखता है। वैसे आप सब लोगों से गुजारिश है कि जरूर सुनिएगा और देखिएगा कि इसमें जनाब अशफाक अहमद साहब जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, उनवान है, और बातें बहुत मज़े की हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, सबको सुननी चाहिए। और बाकी बात इस हवाले से बाद में करेंगे, पहले जाविया सुन लीजिए। तो अशफाक अहमद कहते हैं, थ्री पीस में मलबूस बाबे और चोली मीटिंग। अजीब सा है, मैं अक्सर इस प्रोग्राम में और कभी कभी इस प्रोग्राम से मावरा दूसरे मावाकों या प्रोग्रामों में बाबों का जिक्र करता रहता हूँ और डेरों की बाबत अमूमन बातें करता हूँ, जिसके बायस अमूमन राह चलते हुए और दीगर कई जगहों पर लोग मुझे रोक कर पूछते हैं कि आपके बाबे क्या होते हैं, इनमें ऐसी कौन सी सिफत होती है जो आप इनसे इस कदर मरगूब हैं और इन्हीं का तस्करा करते रहते हैं। हालांकि आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और यहाँ के ही नहीं विलायत से पढ़ के आए हैं, वहां पढ़ाते भी रहे, तो हमें बताइए कि इनमें ऐसी कौन सी खूबी होती है जो आपको मुतासर करती है। मैं इनसे ये अर्ज करता हूं कि अगर आप कभी इनसे मिलें या इनसे इन कॉन्टेक्ट आए तो फिर आपको पता चले कि ये किस हद तक हम आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। बाबों से मेरी मुराद ये नहीं कि एक आदमी जिसने सब्ज रंग का लिबास पहना हो, सर के बाल लंबे, लंबी लंबी लटें रखी हों, गले में तस्बीहात, मनकों की मालाएं डाली हुई, जरूरी नहीं वो बाबा ही हो। बहरहाल कुछ बाबे ऐसे रूप में भी होते हैं, लेकिन अक्सर बाबे जो अब आपकी जिंदगी में आपके करीब से और गिर्दोपेश से गुजर जाते हैं, वो थ्री पीस सूट जेब तन करते हैं, सुर्ख रंग की टाई लगाते हैं और उनकी इस सुर्ख टाई में सोने की पिन लगी होती है, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये शख्स जो मेरे इस कदर करीब बैठा है या मेरे इस कदर करीब से उठकर गया, इसके अंदर वो कौन सी ऐसी बात थी जिसे मैं पकड़ नहीं सका और मैं उससे फायदा नहीं उठा सका। ये बड़ा मुश्किल काम है, फायदा उठाने के लिए अपने वजूद का ऐसा रेडियो सेट जो है वो बनाना पड़ता है जिस पर तमाम स्टेशन आसानी से पकड़े जा सके। मैं एक सिंगल बैंड का रेडियो हूं, मेरे ऊपर सिर्फ लाहौर ही सुनाई देता है, लेकिन मेरे कमरे में दुनिया भर की आवाजें इकट्ठी होती हैं। अगर मेरा रिसीविंग सेंटर अच्छा होगा तो मैं दूसरी चीजें भी बड़ी आसानी के साथ पकड़ लूंगा, लेकिन अगर वही डल तो फिर मुश्किल है। अब इस डलनेस को दूर करने के लिए इस बात की जरूरत होती है कि आदमी ऐसे लोगों से मिलता रहे जिनके अंदर आपको अपने से मुख्तलिफ कोई चीज नजर आए, चाहे वो किसी भी तरह की अच्छी चीज हो। मगरिब वाले इस तरह के रवैये का इजहार करते हैं, वो बड़े मुतजस्सिस किस्म के लोग हैं, उन्हें जो ही कोई जरा मुख्तलिफ, जरा आम हालात से हटकर कोई किरदार मिला, वो रोककर उसे देखते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, तहकीक करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक बात तयशुदा है कि अगर हमने किसी को गलत कह दिया तो वो गलत हो गया। आदमी किसी गलत शख्स के अंदर ये देखता ही नहीं कि शायद उसमें भी कोई अच्छी बात हो, जिसे अपनी तरफ से गलत या खराब करार दे देना अच्छी बात नहीं है, तो उसमें से अच्छाई तराशने की हम जरूरत ही महसूस नहीं करते। मैं अर्ज कर रहा था कि बाबों के पास एक अजीबो गरीब जज्बा होता है, वो हम में नहीं है, वो जज्बा इंसानों से मोहब्बत करने का जज्बा है। हम किताबी तौर पर तो कह लेते हैं कि जनाब हम मोहब्बत करते हैं, ये करते हैं कि हमें इनसे बड़ी मोहब्बत हो गई, लेकिन मोहब्बत के अंदर दाखिल होकर उसको अपनी जात पर वारिद करना ये एक मुश्किल और मुख्तलिफ काम है। जिस तरह बारिश का जिक्र और बारिश के अंदर भीग जाना दो मुख्तलिफ अवामिल हैं। बारिश का जिक्र करने से जिस तरह आदमी भीगता नहीं है, बाबे मोहब्बत के अमल में इस आसानी से दाखिल हो जाते हैं कि हम जैसे लोग हसरत से देखते रह जाते हैं और हमें तब दमे मर्ग यानी मरते दम तक ये हसरत ही रहती है। मिसाल के तौर पर उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो एक नहायत बेहुदा और गैर तवज्जो तलब इंसान के अंदर से भी कोई ऐसी चीज तलाश कर लेते हैं जो उसकी खूबी होती है और वो इसकी खूबी को ढूंढ निकालते हैं। हमसे वो चादर नहीं उठाई जाती जो बाबे उठा लेते हैं। हम से इस तरह उनका छुपा हुआ हिस्सा उजागर नहीं हो पाता। हमारी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से है कि हम जब भी किसी शख्स से मिलते हैं उसकी अच्छाइयों पर नजर नहीं करते, हमें सिर्फ उसकी बुराइयां नजर आती हैं। शायद हमारी तरबियत ही कुछ इस तरह से होती है। मुझे एक बड़ा पुराना लतीफा याद आ गया, आपको भी सुनाता हूं। एक शख्स था, बड़ा बुजुर्ग था, आदमी था, लेकिन उसकी बीवी उससे बड़ी तंग थी। ताने देती रहती थी कि अपनी शक्ल देखो, कैसे बुजुर्ग हो सकते हो। वो बेचारा भी बड़ा परेशान था। तो एक दिन मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वो बैठा दुआ मांग रहा था, तो उसकी बीवी ने आकर उसे ठोकर मारी और कहा, तुम इधर बैठे दुआएं मांग रहे हो, उठो कोई काम करो। बीवी की इस हरकत से उसे जलाल आ गया। वो अपनी जगह से उठा, हवा में उभरा, आसमानों में छा गया और उसने आसमान के तीन चार बड़े बड़े चक्कर लगाए। उसकी बीवी नीचे खड़ी देखती रही, दिल में सोचती रही कि ये कोई अल्लाह का बड़ा प्यारा है। जब उसका शौहर नीचे उतरा तो उसने बीवी से कहा, देखा तुमने हमारा कमाल। उसकी बीवी पूछने लगी, कौन सा कमाल? कहने लगी वो तो खुदा का कोई पाकीजा बंदा था। शौहर बोला, वो मैं ही तो था। तो वो कहने लगी, अच्छा इसीलिए टेढ़े मेढ़े उड़ रहे थे। ये बड़ी पुरानी बात है, लेकिन अब जब हम किसी बाबे से मिलते हैं हमें उसमें से टेढ़ नजर आती है। जब टेढ़ हमें नजर आती है तो फिर हमारी जिंदगी में, हमारी जात और हमारे वजूद में भी एक टेढ़ पैदा हो जाती है और वो निकलती नहीं। इसलिए अल्लाह ने हम पर खास मेहरबानी फरमा कर हमें गीबत से मना फरमाया है। ये ऐसी चीज है जिसका हमें पता नहीं चलता। काफी अरसे की बात है कि हम किसी बाबे की जिक्र की महफिल में दाखिल हुए ताकि अपनी ट्रेनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान के वजूद के अंदर एक ऐसा उज्व है जो अगर खराब हो जाए तो सारे का सारा बंदा खराब हो जाता है, और वो दिल है। इस तरह से हम और आप लोगों के दिल खराब हो गए हैं, इनके ऊपर राख जम गई है, जैसे पुरानी देगची जिसमें चाय पकाते हैं और अंदर और बाहर से वो काली हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे दिल हो गए हैं। हम अल्लाह के जिक्र से इसको साफ करते हैं और इसको मांजा लगाते हैं, और अल्लाह के जिक्र से ये जंग और काई साफ होती है, और यह खराबी बेशुमार गुनाह करने की वजह से पैदा होती है। आप यकीन कीजिएगा, जब मैं इस महफिल में था और मैं इसमें शामिल होने वाला था तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं तो एक अच्छा नेक सा नौजवान हूं, मैंने कोई खास गुनाह भी नहीं किया, तो मेरा दिल कैसे काला हो गया कि मैं इसको मांझा लगाऊं। ये एक ख्याल सा मेरे जहन में आया और मैं काफी देर तक इसे सोचता रहा। महफिल जिक्र से कबल वो बाबा जी कहने लगे कि बेशतर इसके कि हम इस महफिल को शुरू करें, शायद बहुत सारे असहाब ये सोचते हैं कि वो तो अच्छे हैं, उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर कैसे हमारा दिल काला हो गया? कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, कोई चोरी चकारी नहीं की, किसी के घर पे कब्जा नहीं किया। बाबा जी कहने लगे कि ऐसा सोचने वालों को ये मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़े गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह गीबत है। खवातीनों हजरात, अब गीबत तो हम सारे करते हैं, इसके बगैर हम खाना नहीं खाते। हमारे घर में मेरी बहुएं कहती हैं कि मामू अब हमारा गीबत का टाइम हो गया है। 10 बजे उनकी चुगली मीटिंग होती है और वो हर बार एक दूसरे के घर में जाती हैं और कहती हैं कि इस बार हमने चुगली मीटिंग फलां के घर में रखी है, और 10 से लेकर 12 बजे तक वो चुगली करती हैं। मैंने उनसे कहा, तुम इतनी ज्यादा चुगली क्यों करती हो? तो कहती हैं, सारी दुनिया में पूरे कुर्रे अर्ज पर चुगली होती है, जितने भी अखबार छपते हैं, गौर से सुनिएगा सामईन, बड़ी अजीब सी बात है, जितने भी अखबार छपते हैं वो सारा चुगलियों से ही तो भरा होता है। जो कालम छपते हैं उनमें लोगों की खराबियां होती हैं, किसी की अच्छाइयां तो नहीं होती इनमें, और फलां फलां बुरा की गर्दान होती है। इससे हमने सबक लेकर ये काम सीखा है। हमने बाबा जी के यहाँ जिक्र की महफिल में शर्मिंदगी से जिक्र शुरू किया कि वाकई हम चुगली तो बहुत ज्यादा करते हैं और रोज करते हैं। इसलिए करनी पड़ती है कि अपनी जात में चूंकि कोई सिफत या खूबी नहीं होती या कम होती है, और हम दूसरे को नीचे पाने के अंदर धकेल के और डबो के अपने आप को ऊपर उछालते हैं। हमने बाबा जी से कहा कि जी आप कैसे खूबी तलाश कर लेते हैं? उन्होंने कहा, अगर आप किसी शख्स के अंदर दाखिल होंगे और इसके मुतल्लिक साहिब हाल हों तो फिर आपको आसानी होगी और आप भी इस बात या खूबी को पकड़ लेंगे जिसको हम पकड़ लेते हैं। माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा मुजस्मा साज था, बड़े खूबसूरत मुजस्मे बनाए, हजरत ईसा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मुजस्मे बनाए। उसका बनाया हुआ डेविड का 18 फुट ऊंचा मुजस्मा फ्लोरेंस में भी है, जिसे सारी दुनिया देखने जाती है। हमने भी देखा। किसी ने उससे पूछा कि माइकल, ये बताओ तुम किस तरह से ये मुजस्मे बनाते हो? ये तो इंसानी कमाल का एक आखिरी हिस्सा है। उसने कहा, मैं तो मुजस्मा नहीं बनाता, ना ही मुझे बनाना आता है। मैं संगे मरमर का एक बड़ा टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ देखता हूं तो मुझे इसमें से डेविड नजर आने लगता है। मैं छीनी हथौड़ी लेकर इस पत्थर में से डेविड के साथ पत्थर का फजूल हिस्सा उतार देता हूं और अंदर से डेविड यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम निकल आते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मुझे तो डेविड साफ नजर आ रहे होते हैं। मैं बस उनके साथ गैर जरूरी पत्थर जो है ना वो उतार देता हूं। इस तरह से ये जो बाबे है ना, ये इंसान की गैर जरूरी चीजें उतार देते हैं और नीचे से बड़ा पाकीजा अच्छा और खूबसूरत सा इंसान निकालकर अपने सामने बिठा लेते हैं और फिर उसको अपनी तवज्जो के साथ वो सब कुछ अता कर देते हैं, बशर्ते कि वो शख्स उसका आरजूमंद हो और सब्र वाला हो। लेकिन जो आरजूमंद हो और साबिर भी होना चाहिए, जैसे खुदावन करीम फरमाता है, इन अल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर किसी ने अल्लाह को पाना हो तो वह सब्र करने लग जाए तो उसका काम बन जाता है। जबकि लोग इसके लिए वजीफे करते हैं, नाक रगड़ते हैं, लेकिन अल्लाह को सब्र करने वाले पा लेते हैं। मैंने शायद इसी महफिल में पहले भी ये बात बताई है कि मेरी एक ताई थी, वो तेलन थी, उनका शौहर फौत हो गया। वो ताई बेचारी कोहलू पीलती थी, नहाय पाकीजा औरत थी, 18 साल की उम्र में बेवा हुई, लेकिन शादी उन्होंने उसके बाद नहीं की। जब मैं उससे मिला तो ताई की उम्र कोई 60 बरस की थी। उनके पास एक बड़ी खूबसूरत रंगीली पीढ़ी थी, वो इसे हर वक्त अपने बगल में रखती। जब बैल के पीछे चल रही होती तब भी साग बहुत अच्छा पकाती थी। एक रोज मैं उनके घर गया तो मेरे पास वो पीढ़ी पड़ी थी। मैंने उस पर बैठना चाहा तो कहने लगी, नाना पुत्र ऐसे नहीं बैठना। मैंने कहा, क्यों, इस पर क्यों नहीं बैठना? मैंने सोचा कि शायद ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पूछ ही लिया। तो उसने कहा कि तू मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, मुझे गांव में सबसे प्यारा है, लेकिन इस पर नहीं बैठ सकता। कहने लगी कि बेटा, जब तेरा ताया फौत हुआ तो मस्जिद के मौलवी साहब ने मुझसे कहा, बीबी तेरे ऊपर बहुत बड़ा हादसा गुजरा है, लेकिन तू अपनी जिंदगी के पीतल को सोना भी बना सकती है, ये तुझे अल्लाह ने अजीब तरह का चांस दिया है। सामईन कराम, अब इस को आज का छोटा सा वाक्या भी समझ लीजिए, ठीक है, और जो छोटी सी खास बात होती है वो भी हम इसी में शामिल कर देते हैं। जरा इसे गौर से सुनिएगा कि जब तेरा ताया फौत हुआ, वो ताई कहने लगी तो मस्जिद के मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि बीबी तेरे ऊपर बहुत बड़ा हादसा गुजरा है, लेकिन तू अपनी जिंदगी के पीतल को सोना भी बना सकती है, तुझे अल्लाह ने अजीब तरह का चांस दिया है। तू अगर सब्र इख्तियार करेगी तो अल्लाह तेरे हर वक्त साथ होगा, क्योंकि ये कुरान में है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ताई कहने लगी कि मैंने फिर सब्र कर लिया। जब कई साल गुजर गए तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि अल्लाह तो हर वक्त मेरे पास रहता है, तो उसके बैठने के लिए एक अच्छी सी कुर्सी होनी चाहिए कि नहीं। तो मैंने रंगीली पीढ़ी बनवाई और उसको करीने और खूबसूरती से बनवाया। अब मैं उसको हर वक्त अपने पास रखती हूँ और जब भी अल्लाह को बैठना होता है मैं उसे इस पर बिठा लेती हूँ। सुभान अल्लाह, मैं कपड़े धोती हूँ, अपना काम करती हूँ, रोटियाँ साग पकाती हूँ और मुझे यकीन है कि मेरा और अल्लाह का ताल्लुक है और वह सब्र की वजह से मेरे साथ है। खवातीनों हजरात, ऐसे लोगों का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है। ऐसे लोग जिन्होंने इस बात को यहां तक महसूस किया, वो कुरान में कही बात को दिल से मान गए, वो खुशनसीब लोगों में से। और हम जैसे लोग टामक टोइयां मारते रहते हैं और हमारा रुख अल्लाह के फजल से सीधे रास्ते ही की तरफ से है। हमसे कुछ कोताहियां जरूर होती हैं जो हमारे किए किराए पर कूची फेर देती हैं, यानी पानी फेर देती हैं, जिससे हमारा बदन, रूह और दिल खराब हो जाता है। तो अब हम लोग जो है ना, उससे आगे अशफाक अहमद साहब क्या लिखते हैं, थोड़ा सा मजीद है लेकिन इसको फिलहाल हम यहीं तक रोकते हैं क्योंकि जरा लंबा जाविया है। तो ये आज इसको हम इस सिलसिले को रोकते हैं। इंशाल्लाह ताला हुल अजीज जो बकिया इसका चैप्टर का हिस्सा है वो अपने इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश करेंगे। तो समीने गराम, क्या पता चला? पता यही चला कि बाबे का मतलब ये नहीं होता कि वो लंबी लंबी लटे हों, सब्ज लिबास पहना हो, माला गले में पहनी हो। बाबे सूटेड बूटेड भी होते हैं। हमें इल्म नहीं होता। और दूसरी बड़ी सच्ची बात कही उन्होंने, ये सोचिएगा जरा हम लोग क्या करते हैं कि हम जब भी किसी से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी नजर और हमारे दिल में पहले से ही ये ख्याल बन चुका होता है, फलां में तो ये खराबी है, ये खामी है, इसमें तो ये ऐसी चीज है, कमी है। हम कभी भलाई की तरफ नहीं देखते, बुराइयां तलाश करते हैं दूसरों में। तो हम कैसे बाबे हो सकते हैं, हम कैसे उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जो हम बुराइयां ही तलाश करते हैं? इसका मतलब है हम तो बुराई के रास्ते पर चल पड़े हैं, हम तो बुराई को ही अच्छा समझते हैं कि जी इसमें ढूंढा जाए, ढूंढ के उसकी बुराई शख्स की निकाली जाए और उसके बाद वही बात की फिर उसके बाद चुगली की जाए। फलां से मिले थे, फलां ऐसा, फलां वैसा, फलां में ये बात, फलां में वो बात। और ये बहुत गलत बात है, अमूमन लोग कहते हैं जी औरतें चुगली करती हैं। हम ये समझते हैं कि ये ख्याल गलत है, माजरत के साथ, कुछ लोग शायद इत्तफाक ना करें, लेकिन मर्द हजरात भी बहुत चुगलियां करते हैं। वो जब अपनी मीटिंग में बैठे होते हैं ना, चार छह दोस्त मिलके, वो भी यही काम कर रहे होते हैं अमूमन, सब लोग नहीं, जाहिर है इसमें सब शामिल नहीं है, लेकिन अमूमन लोग यही करते हैं, खा मर्द हो, खा औरत हो, खा सहेलियां हो, बच्चियां हो, रिश्तेदार हो, सब बैठ के उनका काम होता है कि जब भी चार बंदे बैठे, दूसरों को हम डिस्कस करते हैं, यह हकीकत है माने या ना माने, और हम उनकी बुराइयां जो हैं वो ज्यादा डिस्कस करते हैं बनिस्बत उनकी अच्छाइयों के। और एक और बात इससे हमारे जहन में आती है, यही वजह है सामीन कराम कि अगर किसी शख्स की जो उसकी अच्छाई होती है ना, तो फिर हम तारीफ कैसे करेंगे? जब हमें अच्छाई नजर ही नहीं आ रही या नजर आ भी गई तो हम उसको सरफे नजर करते हैं, हम तारीफ नहीं करते उस शख्स की, जो भी हो, औरत है, मर्द है, बच्ची है, जवान है, नौजवान है, लड़की है, लड़का है, हम नहीं तारीफ करते क्योंकि हम अपनी जात को, अपने आप को बरतर समझते हैं। हम ये यकीन नहीं करना चाहते कि फला शख्स हमसे बेहतर है किसी न किसी सूरत में, हालांकि अल्लाह ने हर शख्स को खूबसूरत बनाया, हर शख्स को कोई ना कोई खूबी अता की, कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसमें अच्छाई बुराई के साथ अच्छाई ना पाई जाती हो या अच्छाई के साथ बुराई मौजूद ना हो। इंसान खता का पुतला है, हम सब में बुराइयां हैं, हम सब में अच्छाइयां भी हैं कोई ना कोई। कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी अच्छाइयों पे नजर रखें, अपनी हम समझते हैं कि बुराइयों पे नजर रखें, उनको ठीक करने की कोशिश करें, और दूसरे लोग जो हैं उनकी अच्छाइयों पे नजर रखें, तब हम शायद थोड़े से अल्लाह के नजदीक हो सकते हैं। हमारा ईमान तो ज़मीन कराम उस अनपढ़ जो बेचारी वो ताई थी अशफाक अहमद साहब की, उससे भी कमतर है। उसने तो अल्लाह को अपने करीब कर लिया सबर के जरिए, उसके लिए रंगीली पीढ़ी बना दी कि अल्लाह इस पे बैठता है, इतना यकीन था उसको कि वो हर वक्त उसके साथ रहता है। और हम रोजाना जितने मर्जी सिपारे पढ़ लें, खत्म कर लें, जितने मर्जी रुकू पढ़ लें, जितनी मर्जी तस्बीहात कर लें, लेकिन हमारे दिलों पे मैल है, जंग लगा हुआ है। वो किस तरह से दूर होगा? वो दूसरों को अच्छा समझ के दूर होगा, दूसरों की अच्छाइयां करके दूर होगा, उनके काम आके दूर होगा। हमने पहले भी जो बात कही कि बंटवारा फिल्म देखी, आज उसको देखिए आप, बहुत से सबक मिलते हैं आपको उसको देखने के। अभी जिक्र हमने नहीं किया, फोन कॉल्स हमें बहुत सी बीच में मौसूल हुई थी ब्रेक के दौरान, रुखसाना साहिबा से बात हुई। रुखसाना साहिबा, पहली बात तो बहुत शुक्रिया नवाजिश की आप प्रोग्राम में शामिल हुई, और जो आपने बातें कहीं वो भी हम बताएंगे, क्योंकि अभी ब्रेक का वक्त करीब है, हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। सुनते रहिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
1: कम्युनिटी रेडियो, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable, and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets, or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange, and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

जी सौ महीने आराम। इब्राहिम लग तो टिकट कटवा रहे थे, लाइन बनवा रहे थे, बिल्लो के घर अब पता नहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे ये तो वही जानते हैं, लेकिन क्या मजे का गाना था, सुनते थे उस वक्त टीवी पे और अच्छा लगता था। सादगी थी उस जमाने में, सच बात है वो जमाना इतना पुराना भी नहीं, लेकिन आज का जो वक्त है ना वो बहुत मुख्तलिफ है उस वक्त से, ये तो आप भी यकीनन इससे मुत्तफिक होंगे हमारे इस ख्याल से। और अब क्या करते हैं, इसी तरह का एक और गाना हमें याद आ गया, हमने आप सोचा कि इसी माहौल को बनाए रखते हैं आपके लिए, इस गीत को लगाते हैं। और इस गीत को हम किसके नाम करने जा रहे हैं, आफ्ताब, ये तो आप भी यकीनन इससे मुत्तफिक होंगे हमारे इस ख्याल से। और अब क्या करते हैं, इसी तरह का एक और गाना हमें याद आ गया, हमने आप सोचा कि इसी माहौल को बनाए रखते हैं।

जी मोहसिन समीन कराम, खूबसूरत सा अली जफर की आवाज में आपने गीत सुना, उम्मीद करते हैं कि पसंद किया होगा। और समीन कराम, मोहसिन भोपाली की हमने आपको पहले भी एक गजल सुनाई थी और एक बहुत ही उनकी एक नज्म है, बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी नज्म है, लेकिन क्या कहने उसे कहते हैं, तुम मोहसिन हो ये तो ठीक है, तुम मोहसिन हो ये तो ठीक है, लेकिन तुम ये भोपाली क्यों लिखते हो? अगर ना लिखता आप पूछते कहाँ के रहने वाले हो, मैं कहता लाड़काने का, तो फिर कहते पाकिस्तान आने से पहले कौन से शहर में रहते थे, मैं कहता भोपाल, घुमा फिरा कर मुझको जो बतलाना पड़ता मैंने साथ ही लिख रखा है। क्या कहने हैं सामेईन, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। और इन्हीं की एक और गजल थी, बहुत मशहूर गाई हुई।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

ये बर्फ्रोबेशन रेडियो की आवाज है 14-13 मिलियन वेव पर यॉर्कशायर के ससीम वादियों में दुनिया के चार कोने में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bradfordationradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह बाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वह बाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस बज़्म गजल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुश आमदीद कहेंगे।

दोस्तों, जब आप प्रोग्राम सुन रहे थे, यानी पहला गीत जो हमने आपकी नजर किया था, तो हमने उस दौरान ताज़ा पानी भरा। मंडे को जब हम प्रोग्राम करने आते हैं तो हमें अपनी ये जो बोतल है पानी की, इसे वॉश करना पड़ता है, दो दिन से पड़ी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा मीठा पानी लेकर मैं आ गया हूँ और तारुफ मैं करा चुका हूँ अपने तमाम उन मेहमानों का जो अभी तक तशरीफ ला चुके हैं। हम आप सबको दिल की गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं रियासत साहब के तोहफे की जानिब, जो कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे थे कि बस हम इंतजार कर रहे थे कि रिफत भाई कब आएं, कब हम अपना तोहफा वसूल करें और रुखसत लें। यह आपकी मोहब्बत है, चाहत है, प्यार है कि आप मेरे मुंतजर थे, मैं आ गया हूँ और हम बिला किसी ताखीर के आपका तोहफा, आपके अहल खाना का तोहफा जो आपके हमराह मौजूद हैं, लेकर हाजिर हूँ। आप सब जानते हैं कि रियाज साहब हर रसूल की हसीन फजाओं से तशरीफ लाते हैं और खां साहब मेहंदी हसन खां साहब के शहदाई हैं, सो आज भी उन्होंने एक गीत उन्हीं की आवाज में पसंद किया है जो मैं उनकी नजर कर रहा हूँ। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हमें मुत्तला करना चाहें कि वो हमारी महफिल में शामिल हैं, तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। और आइए हजरतफील की हसीन फजाओं में चलते हैं और रियासत साहब और उनके अहले खाना का तोहफा उनकी नजर करते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो, जिसकी ये नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, इंग्लैंड या स्कॉटलैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज़्म की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम इन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677 और अभी तशरीफ लाए हैं नज़ीर अहमद साहब, आप लैया पंजाब पाकिस्तान से हमारे हमराह मौजूद हैं और कहते हैं कि मेरी जानिब से तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, सदा सलामत रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये इन्होंने सिर्फ एक पैगाम लिख रखा है जो रोज़ाना उनका यही आता है, मगर ये मोहब्बत है कि सात समंदर पार से वो इस कदर बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाते हैं। तो इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद हम नज़ीर अहमद साहब लैया पंजाब पाकिस्तान आपका तोहफा आपकी नज़र कर देंगे, इसलिए कि हमें इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है इंटरनेट का वो बहुत गड़बड़ है, ऐसा ना हो कि आपका तोहफा मिस हो जाए। सो हम अगला गीत आपकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिज़्ज़ोमान में रखे।
1: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274914942,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong
4: career. With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.

0: जिस सो आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, जिसमें अभी अभी शामिल हुए हैं परदेसी मजीद साहब, तशरीफ लाए हैं खारिया गुजरात पाकिस्तान से और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका, सबको मेरा सलाम कहना। शकील साहब, रिजवान साहब, नवीद साहब और चौधरी रुखसार अहमद साहब को मेरा खुसूसी सलाम पहुंचे। आपका मोहब्बत भरा सलाम इन तमाम अहबाब तक हवा के दोष पर पहुंच चुका है। हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मुंतजिर हैं कि आज आप क्या सुनना चाहते हैं। कमर्शियल के वक्फे के बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार लेकर हाजिर होगा।
1: On 14:13 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

और दोस्तों आप सुन रहे हैं एक शायर एक गीत दो फनकार। आज के शायर हैं मसूर अनवर और फिल्म का नाम है खुशबू। 1977 की ये फिल्म है। ये गीत जो अभी आपने सुना इसे शाहिद पर पिक्चराइज किया गया था जो इस फिल्म के हीरो थे, और इस गीत को रानी पर भी पिक्चराइज किया गया। रानी इस गीत की हीरोइन थी। तो आइए सुनते हैं मंजूर अशरफ की मौसीकी, मसरूर अनवर के बोल और आवाज है मेहनाज की।

और दोस्तों आप सुन रहे थे आज का सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। आज के शायर थे मसरूर अनवर, दो फनकार थे खान साहब मेहंदी हसन खान साहब और महनाज बेगम साहिबा। फिल्म का नाम था खुशबू, 1977 की ये फिल्म थी जिसमें शाहिद और रानी ने अपने अपने किरदार हीरो और हीरोइन के तौर पर निभाए थे। अब हम इस उम्मीद पर कि आप हमें अपनी राय से जरूर मुत्तला करेंगे कि आपको आज का सेगमेंट कैसा लगा। आपको लिए चल रहे हैं ब्रेडफोर्ड 18 में, जहां मौजूद हैं हमारी मोहतरम प्यारी सी बहना, नाम है शहनाज, जो हमें ढेरों दुआओं से नवाजती हैं और एक दुआ सुनने के लिए वो हमेशा हमारे प्रोग्राम में आती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अपने बच्चों की बहारें देखो। कहती हैं कि जब मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ तो उन लम्हात में मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ और वो गीत जो मैंने बचपन में सुने होते हैं वो मैं याद करती हूँ। तो आज भी उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत, एक बहुत ही सहरंगेज आवाज़ जिसे दुनिया नाहिद अख्तर के नाम से जानती है, उनकी आवाज़ में सुनना चाहा है। जीती रहो हमारी ढेरों दुआएं बिटिया, हमेशा आपके साथ हैं। आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल कीजिए। आमद का बहुत शुक्रिया शहनाज।

दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको लेकर चलें खादियां गुजरात पाकिस्तान और परदेसी मजी साहब का तोहफा पेश करें, वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co पर, .uk भी है। सो हमारे वो अहबाब भी हमारे हमराह मौजूद हैं कसीर तादाद में, जिन्हें हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, जो हमारी बज्म में शामिल हैं ऑनलाइन। और आपके लिए यकीनन हम कोई खूबसूरत गीत का तोहफा भी पेश करेंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, और हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेरी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306777 पर खुश आमदीद कहेंगे। कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद हम आपको ओल्डहम की सैर कराएंगे, जहां से हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर मोहम्मद अयूब चौहान साहब हमारे हमराह मौजूद हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि आज वो हमारे तमाम सामईन और नाज़रीन के लिए क्या तोहफा लाए हैं। जो गीत वो सुनना चाहते हैं वो तो मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूंगा। तो बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब, मुलाकात होगी आप सबसे एक मरतबा फिर कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद।

0: Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफवे राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
4: जैसा कि हमने आपको बताया था, इससे पहले कि हम खाड़ियां गुजरात में मौजूद परदेसी मजी साहब का तोहफा लेके चलें, हमारे हमराह मौजूद हैं ओल्डहम से, हमारे बड़े खूबसूरत, सादा और दिलकश शख्सियत के मालिक मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम रिफत अब्बास भाई, आप ठीक हैं?
4: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं?
5: मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आज मैं जहाँ पर होता हूँ वहाँ नहीं हूँ, जहाँ पर नहीं होता
4: वहाँ पर हूँ,
5: कर रहा हूँ।
4: अरे भाई, ये भी शेर हो गया, मिसरा बन गया, जहाँ पर होता हूँ।
5: तो अभी वो दो गाने आपने प्ले किए, एक तीसरा भी है उसको, ऐसा ही गाना बॉलीवुड का है
4: जी,
5: तो वो भी इनसे ही मेरा हैरा लिया हुआ है। पर बहुत से गाने मिलते जुलते होते हैं।
4: जी हाँ, बहुत से गीत हैं जो यहाँ भी और वहाँ भी गाए गए। जी
5: जी, एक मैं सुबह देख रहा था, एक किस्मत फिल्म थी अशोक कुमार की, बड़ी पुरानी फिल्म, उसका गाना भी एक पता नहीं बुलबुल का जिक्र आ रहा था, मिलता जुलता था पाकिस्तानी गाने के साथ।
4: जी हाँ, वो एक दूसरे से वो लेते रहते हैं।
5: अच्छा, मैं शायरी सुना देता हूँ।
4: जी जी जरूर जरूर।
5: इश्क में नाम कर गए होंगे,
4: इश्क में नाम कर गए होंगे,
5: जो तेरे गम में मर गए होंगे।
4: भाई वाह वाह वाह वाह, भाई क्या इंतखाब है, अता कीजिए, दोबारा पढ़िए।
5: इश्क में नाम कर गए होंगे, जो तेरे गम में मर
4: गए होंगे। वाह वाह वाह वाह,
5: अब वो नजरें इधर नहीं उठती,
4: आहा,
5: हम नजर से उतर गए होंगे,
4: हम नजर से उतर गए होंगे। वाह वाह, क्या इंतखाब है भाई, वाह वाह वाह।
5: कुछ फजाएं में इंतशार सा है,
4: कुछ फजाओं में इंतशार सा है,
5: उनके गैसु
4: बिखर गए होंगे। वाह भाई वाह वाह वाह वाह, पढ़िए इसे दोबारा, वाह वाह वाह।
5: कुछ फजाओं में इंतशार सा है, उनके गैसु बिखर गए होंगे।
4: भाई वाह वाह वाह वाह,
5: नूर बिखरा है राह गुजारों में,
4: नूर बिखरा है राह गुजारों में,
5: वो इधर से गुजर गए होंगे।
4: बहुत उमदा, क्या खूबसूरत इंतखाब है भाई, वाह वाह वाह।
5: मैं कदा में क्या बज़्मे जाना था,
4: मैं कदा में क्या बज़्मे जाना था,
5: और जालब किधर गए होंगे गे।
4: आहा,
5: तो ये जालब साहब थे। इतना था, एक और है।
4: जी जी,
5: बातें तो कुछ ऐसी हैं खुद से भी ना की जाएं,
4: बातें तो ऐसी कुछ ऐसी हैं कि खुद से भी ना की जाएं,
5: सोचा है खामोशी से हर एक जहर को पी जाए।
4: आहा,
5: अपना तो नहीं कोई वहाँ पहुँचने वाला,
4: अपना तो नहीं कोई वहाँ पहुँचने वाला,
5: उस बजर में जाना है जिन्हें अब तो वही जाए।
4: आहा,
5: अब तुझसे हमें कोई तलक नहीं रखना,
4: अब तुझसे हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना,
5: अच्छा हो के दिल से तेरी यादें भी चली जाएं।
4: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
5: एक उम्र उठी उठाए हैं, एक उम्र उठाए हैं सितम यार के हमने,
4: आहा,
5: अपनों की तो एक पल भी चफाए ना सही जाएं।
4: जाएं, वाह वाह वाह वाह,
5: जालब हमें दौरान हो के याद रुख जाना,
4: आहा, जालिम गम दौरा हो के यादें रुखे जाना,
5: تنہا مجھے رہنے دو میرے دل سے سبھی جائیں.
4: بھئی یہ شعر دوبارہ پڑھیے مختا.
5: جالب غم دوران ہو کے یاد رخ جانا,
4: یاد رخ جانا,
5: تنخواہ مجھے رہنے دے میرے دل سے بھی جائے.
4: واہ واہ واہ واہ بھائی, واہ واہ واہ واہ.
5: آج میں نے جالب صاحب کو یاد کیا تو پھر
4: بہت بڑا شاعر تھا حبیب جالب, اور ان کا انتخاب جو آپ نے کلام کا کیا وہ بھی لاجواب تھا.
5: جی تو شکریہ جی, انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات.
4: ضرور ضرور, یوں ہم نے آپ کا گیت نوٹ کر لیا ہے, انشاءاللہ جلد ہی پروگرام میں شامل کریں گے.
5: اوکے مہربانی, شکریہ جی,
4: اللہ حافظ. اللہ حافظ, جیتے رہیے جیتے رہیے. اور دوستو آپ تھے ہمارے محترم محمد ایوب چوہان صاحب جو بے انتہا محبت اور پیار سے تشریف لاتے ہیں اولڈ ہم سے, اور ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں. اب حسب وعدہ ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر کھاڑیاں گجرات پاکستان. ایک خوبصورت شعر نام کر رہے ہیں ہم پردیسی مجید صاحب آپ کے, کہ جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی. جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی, اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی, اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. تو آئیے بڑھتے ہیں اس گیت کی جانب جو آج سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے کھاڑیاں گجرات پاکستان سے ہمارے محترم لسنر سات سمندر پار سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں جناب پردیسی مجید صاحب نے. تو حاضر ہے, قبول کیجیے. اور اس کے بعد ہم آپ کو امروہہ لیے چلیں گی جہاں موجود ہیں ہمایوں پرویز صاحب اور ان کے اہل خانہ, ہندوستان کے معروف مقبول حضرت عزیز اور محبوب شہر امروہہ میں.

0: दोस्तों वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। ये पसंद थी हिमायूं परवेज साहब की अमरोहा से, और इसके बाद कमर्शियल के वक्फे के बाद हम आपकी नजर करेंगे अय्यूब चौहान साहब और ढंग से हमारे हमरा मौजूद थे, उनका तोहफा।
1: bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: हाथों से छोटे हैं। ईद मिलाद नबी की खसूसी नशरात के लिए सुनते रहिएगा ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: And the winner is
2: your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 81/83 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
7: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
11: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: और दोस्तों, हस्ब वादा अब हम आपको लिए चल रहे हैं ओल्डहम, जहां मौजूद हैं मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत। इसके बाद हम ओल्डहम से आपको लिए चलेंगे शकील भाई के तोहफे की जानिब, जो बर्नले में हमारे हमराह मौजूद हैं। अय्यूब चौहान साहब, आज आप कहीं दूसरी जगह पर मौजूद हैं, जहां भी मौजूद हैं आपका तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए। आमद का बहुत शुक्रिया।

दोस्तों, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अम्बरीन जहरा हमारी बज़्म में तशरीफ लाए हैं और आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा लाए हैं। हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अला इबादिल्लाहि सालेहीन। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और नजरे बद से बचाए। अब हम चल रहे हैं उस गीत की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हमारे मोहतरम जनाबे शकील साहब ने। आप इस वक्त हमें बनले में सुन रहे हैं, उनका तोहफा लेकर हाजिर हैं। खुश आमदीद कहना चाहेंगे एडी चौधरी साहब को, जो अभी अभी हमारी बज़्म में तशरीफ लाए हैं और अभी रवाना नहीं हुए हैं, M62 की जानिब रवा दवा होंगे थोड़ी देर बाद, जब तक हम उनका तोहफा उनकी नज़र कर देंगे। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि हमारे नादीदा लिसनर और सोते मुजाहिद एक कसीर तादाद में हमारे हमरा ऑनलाइन मौजूद हैं, उनके लिए हमने गीत का तोहफा रखा है जो हम उनकी नज़र शकील साहब के तोहफे के बाद करेंगे। आप सबकी ये मोहब्बतें, चाहतें और प्यार हमारे लिए बाई से सद इफ्तिखार है कि आप ऑनलाइन सुनकर हमारे प्रोग्राम की जीनत तौकीर बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मैं अपने अहबाब को ये भी बताता चलूं कि व्हाट्सएप पे जो आप पैगामात भेजते हैं आज मैं वसूल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जल्दी में मैं व्हाट्सएप वाला फोन आज घर ही छोड़ आया हूं। तो अगर आप व्हाट्सएप पे पैगामात भेज रहे हैं तो मैं आज देख नहीं पाऊंगा, घर जाके ही देख पाऊंगा। अब चलते हैं उस गीत की जानिब जिसे पसंद किया है हमारे मोहतरम जनाब शकील साहब ने, इस खूबसूरत शेर के साथ जो हम आपकी नजर कर रहे हैं अब्दुल हमीद आदम का, कि जब भी किसी ने हंस के मुरव्वत से बात की, जब भी किसी ने हंस के मुरव्वत से बात की, दिल से तमाम उम्र के गम दूर हो गए। तोहफा हाजिर है शकील भाई, आमद का बहुत शुक्रिया।

और दोस्तों, इससे पहले कि हम M62 पर AD चौधरी साहब का तोहफा उनकी नजर करें, मैं शुक्रिया के तौर पर अपने तमाम अहबाब को जो इस वक्त हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपकी ये मोहब्बतें, आपकी ये चाहत और ये हिम्मत अफजाई हमारे लिए काबिल सद एहतराम है। जहाँ जहाँ भी हवा के जोश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं, हम आपको दिल की गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं और आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम कि आप ऑनलाइन आकर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। आपके लिए हमने एक बेइंतहा खूबसूरत गीत मुंतखब किया है जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगा शहरयार साहब जो इस वक्त हमें नॉर्थ हॉल्ट लंदन में सुन रहे हैं, अपने अहल खाना के हमराह हमारी बद में तशरीफ लाए हैं और उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा आप सबकी नज़र किया है और सुनना चाहते हैं खूबसूरत गज़ल मेरी पसंद की। तो हम सोचते हैं कि क्या सुनाया जाए आज शहरयार साहब आपको, लेकिन अभी तो हम चल रहे हैं आपको लेकर अपने उन श्रोते मुजाहिदों और नादीदा लिसनर्स की जानिब जो सुनते हैं हमें ऑनलाइन। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत से रखे और नजरे बद से बचाए और आपकी मोहब्बत यूं ही कायम दायम रखे आपकी मोहब्बतों के नाम।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं देखता हूँ रिजवान रिजवी साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम हजरत हबीब जालिब मरहूम का भेजा है, जो हम इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद शामिल प्रोग्राम करेंगे। साथ ही साथ कमर्शियल के वक्फे के बाद हम आपको M62 मोटरवे पर लिए चलेंगे। जो गीत अभी हमने पेश किया, ये हमने अपने उन तमाम नादीदा लिसनर्स के नाम किया था जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद आपसे मुलाकात होगी। और बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने बता दिया, शहजाद साहब कह रहे थे कि मैं समझ रहा था कि मेरा व्हाट्सएप पे आपको पैगाम मिल गया होगा। नहीं, हम आज नहीं देख पाए क्योंकि हम टेलीफोन घर भूल आए थे। कोई बात नहीं, आपने प्रोग्राम सुनते हुए ये मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई थी सुन ली, इसलिए आप अब हमारी बज़ में मौजूद हैं। इंशाल्लाह एडी चौधरी साहब के तोहफे के बाद हम आपकी गजल मैंने मुंतखब कर ली है अपनी पसंद की, जिसे मैं आपकी और आपके अहले खाना के नाम करूंगा। बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब, ये याद दिलाते हुए कि आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सचिन वादी में और दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर।
1: रेडियो Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे दरमियान मौजूद हैं एडी चौधरी साहब, जो रिवायतन हमारा प्रोग्राम M62 मोटरवे पर सुनते हुए अपना सफर तमाम करते हैं। उनकी पसंद लेकर हाजिर हूं और इसके फौरन बाद हम वो खूबसूरत कलाम जो आपके लिए इस हसीन जोड़ी ने कराची पाकिस्तान से मुंतखब किया है, रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा काजमी ने, और वो गीत एक साथ पेश करेंगे ताकि हम मुबर्रा हो सकें अपनी जिम्मेदारी से। और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे नॉर्थ हॉल्ट लंदन, जहां हमारे मोहतरम जनाबे शहरयार साहब अपने अहल खाना के हमरा एक खूबसूरत गज़ल सुनने के मुंतज़िर हैं। और गज़ल मैंने मुंतखब कर ली है, ये गज़ल जो मुंतखब आपके लिए की है मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आइए चलते हैं M62 मोटरवे पर और AD चौधरी साहब को उनकी पसंद का तोहफा उनके नाम करते हैं। आपकी आमद का हमेशा की तरह हाजिर है, कबूल कीजिए।

0: radio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
6: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
3: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563.

0: क्या
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3।
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
1: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
4: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोत्रिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मोत्रिस दी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मोत्रिस दी।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग 77 Arthington Street, ब्रैडफोर्ड BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.

0: और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कार्पेट्स, लिस्टेडाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कार्पेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
3: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
4: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
8: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

0: Open 7 days. Pal, C Room, 46 Aruli Avenue, Bradford. BD6 1DA. Phone 01274306567. Behind Shell Petrol Station.
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77
3: You're listening to Bradford Asian Radio
4: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुताफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर मिलाई जाए

0: Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274-306-77.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रेडफोर्ड एशियन
3: ब्रेडफोर्ड नंबर 1 एशियन कम्युनिटी रेडियो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
9: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
10: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
9: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
10: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
9: फर्स्ट चॉइस
10: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
9: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
10: 01274317644।
11: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
12: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
12: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
12: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रेडफोर्ड, BD8 ATY।
10: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
12: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
10: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
12: बालियां, अंगूठियां और हार,
10: जो दुल्हन करे सिंगार,
12: आज ही मामू काके की दुकान,
10: खालिस सोने की पहचान,
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
12: आपकी शान
10: हमारी आन,
12: क्वालिटी की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
10: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
12: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
10: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
10: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
12: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: نبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है.
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा. मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं. मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे.
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR. टेलीफोन 07885428349. अदर ब्रांच, मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड.
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे.
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स.
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ. बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN. बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है.
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए. आज ही तशरीफ लाइए. ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA. फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन.
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए.
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं.
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है.
6: मंगला केटरिंग, 77
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets, or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange, and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
4: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.